குட் மார்னிங், நமஸ்தே, சத் ஸ்ரீ அகால், வணக்கம் ஆர் ஆதாப் டு ஆல் ஆர் வண்டர்ஃபுல் லிஸ்னர்ஸ் டியூனிங் இன் டு WVKR 91.3 FM அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ரேடியோ ஸ்டேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் ஃப்ரம் வாசர் காலேஜ், பிகிப்சி, நியூயார்க். யூஆர் லிஸ்னிங் டு கீத் மாலா, யுவர் ஃபேவரட் ஷோ பிரிங்கிங் சுர் சங்கீத் அண்ட் டைம்லெஸ் மெலடிஸ் டு பிரைட்டன் யுவர் டே. आप सुन रहे हैं गीतमाला, जहां पुरानी यादों के नगमे और नए जमाने के सुर मिलते हैं. यू कैन लिसन टू अस ऑनलाइन एट wvkr.org और थ्रू द ट्यून इन ऐप बाई सर्चिंग फॉर WVKR गीतमाला. फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट और कॉमेंट्स, फील फ्री टू कॉल अस एट 845-437-7178. हमें आपके कॉल्स का हमेशा इंतजार रहेगा. आई एम योर होस्ट प्रीता, हियर टू ब्रिंग यू सोलफुल सॉन्ग्स एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस टू मेक योर मॉर्निंग ट्रूली स्पेशल.